0: ये चेंडा कतेरा कतेरा ये बेसी दाना वाला नहीं चाहिए क्या बीसूबी खाली बीसूबी बोलो माय डैड व्हेन ही इज ओनली 14 ही केम टू इंडिया ए क्या ना आपका क्या ना हुआ हेलो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू देयर इज नो वे टू गो एंड दे रिकवर दैट Kolkata, India is a very good place and it's easy to earn living. So he came to Calcutta and from then he stay in India. He never wants to go back to China again.
1: आप फिर आइए हम जानता आपको एक थमाल करा
0: क्या हुआ क्या ना पीसो
1: आज पीसा भी हुआ हाँ हुआ
0: बस
1: 20 किलो आप लेते
0: हैं बस बस भिंडी अच्छा नहीं लग रहा आधा किलो भिंडी दे Okay.

अच्छा गौरव कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है. हम लोग एक इनोवा जाएगा तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है ये वाला. हम लोग का पूरा टीम आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को आपका गाड़ी में बैठ जाएगा. टिकटी बाजार टिकटी बाजार टूंगान चर्च का सामने.